पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हों मैं सुरत विसार, हों मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होए, गुर शब्द सलाहे साथ सोए, जा को तू राखे रखनहार, सतगुरु

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किस सांझी।

जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए।

तीजा राते सात हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

गुर के शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चे पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक हो वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसै मन आए भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहा भरपूर इस भगती का कोई जाने।

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छावकणी फूली बन राय गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचो झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर भोग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक पोचे तै फिर जून ना आवे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विचों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहु जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट हो।

एको करता अवर्ण कोए, गुर शब्दी मेलावा होए, जिन सच से व्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करें जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर सेती सद रहे लिवलाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको सेवो अवर न कोए, जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, जिस बिन अवर सेवी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक सियान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

पल ले पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाई।

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नी चूका अभिमान।

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कहे न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए पले फुलिये राम नाम सुखोए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे उदारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक यो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे पाग हर पगत कराए इस मन को बसंत की लगे न सोए ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए माया मूठा सदा बिन लाए यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे ए मन छूटा गुरु लिया छाए नानक माया मो शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए ए जी जंत फूले हर चित लाए इन विद ए मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ सतगुर पाणी शब्द सुनाए ए जग हरिया सतगुर पाए।

गुरसा लाई सद अपना पाई, गुर चरणी चित लाई, मेरे मन राम नाम चित लाए, मन तन तेरा हरिया होवे, इक हर नामा।

तूर्तिना की अकुली है पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मेला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज।

मन मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले ता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, तखंड परम उपाव कर था के, रिद अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विकमल परया, मिल संगत कर

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे। गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल मैला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे है दिल कर नहीं वाता पाई है गुर अंकत शब्द दास।

मम आधा ना हर रसे स्वाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान। बसंत महला पंजवा। तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत पछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए, गुर पूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ, अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए, किर्त ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए, बसंत महला पंजवा। गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम, जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवे, बिन सत गुरु दी सै बिल लांती। सापत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मही अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास, बसंत महला पंजवा।

तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया। सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

अपने सेवक को पया दयाल। गुर पूरे सब पूरा किया, अमृत नाम हृदय में दिया रहाओ। कर्म कर्म मेरा कछना बिचार्यो, बां पतर पव जल निस्तार्यो। प्रभ काट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे। आप

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

क्या है भाणा कहो नानक कह तया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल मेला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रवधनी मोहि निस्तारो निर्गुनी रहाओ ओ पत पर लो।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तक निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

की गाय बसंत महला पहला अष्टपदिया कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरे दे।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

साखु हर नाम निवासा आप पछान रहे लिव लागा जन्म जीत गुरमत दुख पागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो कर राखो गुर पावे तुम रो होए सो तुझे समावे भोगी को दुख रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूल।

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं।

तू अकल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

करेंगे कर कर सिर्फ तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका करी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

आसा, आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जले समावे। बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुकिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार, बाल्मीकि कह हुआ साध संग, त्रू को मिलिया।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उधार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूजे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

दो संसार मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह बहुत।

करता तू करुणहार, तू ऊंचा तू बहु अपार, कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरण आए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाए।

सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अखाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जारे पाच बर्ग पचीसक संग काच नौ बैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी पाहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बदे।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय दिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर दू।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

कते त्रुट तुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंच नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो तू टूंड खाए और किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ।

जो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभिमान न

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर, आत्म जोत पई पर फूर।

नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे जिन ऊपर गुरुमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे अनदिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस रसना।

नानक दासन दास कहत है, कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा। गोविंद की ऐसी कार कमाए, जो किस करे सो सत।

आप बसे मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर जाया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण।

जे पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्र की ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हरनाओ जाको कोई

आन उपाव न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा। सार महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत विराग।

चरण वंदना अमोल दास रोदियो, साध संगत अरदागियो, करो कृपा मोहे प्रभु मिलावो, निमख दर्श पे खा गयो, दृष्ट पई तब पीकर आयो, मेरा मन अंदिन शीत लागयो, कहो नानक रस मंगल गाए, शब्द अनाहद बाजियो, सारंग महला पंजवा, माई सत

सगल विनाशी इक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पाकरे।

सब आपद जय गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महा प्यान उद्यानद। जहां कीर्तन साध संगत रा

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते ते पहे तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेता किस हो।

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, हम दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

पार ब्रह्मचर्य उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे नाम।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई राव।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौला गो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग पूर लपटायो उर्ज परयो कुसमाही, कर्म राय जब पकरस बवरे तो काल मुखा उठ जाही, सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कौ नानक।

जाके बिछड़त होत मृतका गृह में रह न पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई करो कृपा।

मन कहाँ लुभाये आन कहो, ईत ऊत प्रवसदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल अग्र।

लाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन का आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई कौ नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो।

हे सूख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मुहे लब दियो है हर टेका गुरदयाल पै सुखदाई अंदुले मानक देखा रहाओ।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाए पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुग

पाया। हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हफ करो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगैं अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमक उपाय।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे।

पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणी था सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल कीरत मजनी था कहो नानक रंग चलूल पए हैं हर रंग नल है मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभ हीर बसियो सगल फूक मेरी लाते रहाओ कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोहि तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे सहु नानक मैं

तो बचन दियो मेरे सतगुरु, तो मैं साज सिवरी आ रहा हो। हम भूले तुम सदा भूला, हम पतित तुम पतित उधरिया, हम नीच बिरत तुम मैं लागर, लाज संग संग बसर।

न्यायी जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल

की कीजै। सुखदाता प्रभ ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये। तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाये।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कवन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु उधायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावने आपे कहो नानक आप अपायो।

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए।

आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई वडभागी नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग

दरस्त्यास आस एक है की एक ही है प्रे पागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकार

निर्भव भय सगल पहु मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, यो जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुर उपदेश साध की संगत, विनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक मन साचा, पूरन पूरे नाद, सारंग महला पंजवा, मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, तिस गुर के

मान उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया, उतर

अनद अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कद लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवां, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी। रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र लोक, ता मैं जल सो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पै शीतल, दुख दर्द प्रम हिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन।

देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कच करनी यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोख छिदर या तन में दिखे ब्याद की।

सच तन बन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कवन मूल ते मानुष करया के ऊपर ताप तुहारा रहाओ जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए।

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम, सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पै

भगत गुण गावत गीजे होहत नै संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी इहो साधको आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

होए एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहे। पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो, चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आनना दूजी जाए। जो तू राखे तिव ही रहना, तुमरा पेने खाए। साध संगत के बल बल

पीवत अमियो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंश प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कम

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गई दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतियो, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण रा

मानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के कुहु दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभु संत राखे, चरण कमल आधार कर जोर नान।

कास्यो न्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गयो, मुक्त हो है छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहां नर अपनो जन्म गवावे।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बड़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत सात निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोह लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

मनुआ डोले अकथ ना कथे कहानी गुरमत ने चल हर मन वस्या अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सह सुबाई सतगुरु मिल रही है।

हर रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मेल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर सा चामन भाया हर बिन अव...

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाई है, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल।

काट काट कथा राजन की चाले, कर कर तुझे उमा जी जंत सब पाछे करया, प्रथमे रिजिक समाहा, जो किछ करना

मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पए कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नी

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जाका विस्तार, सो बाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने न जाहे, सोग हरक दोहू में नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करें, अनक महेश बैस त्यान करें।

दाता। कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थीरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग कटा।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नाभि वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया, आपे खेल रचायन सब जगत सवाया, त्रै गुण आप सिरजियन।

रहे हर नाम समाया। श्लोक महला दूजा सहा चले वन जा रहा लिखिया देवे नाल लिखे ऊपर हुक्म होए लिये।

करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

आए मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहाएन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे साथी आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ते आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया।

पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख विच जमन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोई।

मैं अंधे नाउ सुजाता। जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई, नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई। महला पहला।

जो उस इच्छे सो तल पाए। ता नानक कहिए मूरत पौड़ी, सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया, सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिला।

चुराया पुत्र कलत्र न विसहै बहु प्रीत लगाया देख दिया ही माया तो गई पछताया पछताया जम दर बदे मा

रूप इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खारे जे दिन गुण गर्भ कर।

वस्त पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुरु।

होवई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

सिमा हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी यूं उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीर्त भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपुरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया।

प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाई है।

तुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडी था कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहीं है दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो है जिस बात एम से अंतर रह निवलाए सोई पुरख जे सच समाए जा पुलीन सेवक जे होए ताता कहना कहो न कोए विस्नाती सेवक होए नानक पन्या पहरा सोए मल्हार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख पूख एक दुख सकतवार जमदूत एक दुख रोग लगे तन काए वैद ना पोले दा।

मानस का तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

तेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गिरना बूझे जिस

जम काल गुरमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाल सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बक्षे पलत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए मल्हार महला की जाए गुरसावाही सदा सुख दाता।

हम दिन हर रविवार अंतरे सह समाध लगाही सतगुरु शब्दी इव मन ते दिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभु अलख न जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी आपके दया करे सुखदाता।

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे,

अमर सुख अंतर सदा निभय के रहनाल राव। मन मुखता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ न आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्या।

हम दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए, मलार मैला तीजा त्रम त्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई, सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलया महल कर।

कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे, अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार, दर्शा चे गुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया, बिन गुरु परम पूले बहु माया, हों में ममता बो मोह वधाया, दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा, गुरु शब्दी जपिए सचलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम।

हों तुन जम के सब लागो पाए, हों जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ, माया मोह अज्ञान।

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कल गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हा खिन खिन दिल लाए, बिन तुर देखे नींद ना पाए, यो विछोड़ा सहा ना जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, जिन पागा नाम न पाया जाए, बहु विरथा का कर्म कमाए, त्रैगुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या

अंदन हर हर त्यारो हृदय मत गुरमत दुख विसारी सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो किस विधवा कर मैं तारी हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस एनस हर

गुरपुर हूँ मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी। उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

उस साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तर गुर के बचन करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण विचरे हर का जन हर जल का मीना हर विसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे मल्हार महला चौथा जितने जी जंत प्रभु कीने तितने सिरकार लिखावे।

नानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सब संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंग दिन अंग भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, ओए आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुबदा ताब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरखा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ पागी। हर का पंथ को बतावे, हौंता कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमत पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह काहू।

ए मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी ओ आया, तो मैं सब सुख पाए, संत सवा ओट गुर पूरे, फिर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक संत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मनहार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह न जाए, सार संभाल माता मुख नीरे, तब हो तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रभ दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निधान गृह तेरे, मन बांचे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना, मनार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, पगत करो निर पाए, जब प्रेम आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पहे अनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का ती हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहुजोनी, एक न काहू तरते।

गगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पहे मन निर्मल गुन गाए रंग रांगी एहो मन दे किए संत नीता कृपाल पे बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संगराती एहो मैं की टीठाई कई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

किलबिक फाडे है छाट, कल कलेश मिटे दास मानक, बहु न जोनी माट, मलार महला पंजवा, बहुविध माया मोह हिरानो, कोट मदे को बिरला सेवक, पूरन भगत सिरानो रहाओ, इत उत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दुराए करत ठगियाई, हो तो संग ना जानो, मृग पंखी मीन दीन नीच ए

अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल को कृपा की जय कर गह लिहो दास अपने को नानक अपनों की जय मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहा।

कार्तियो में स्वामी प्रम्पो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाए गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

कहीं न जाए। कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे। आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना। हुकुम

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाए वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास। राग

गुरमन आर प्रेद आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए के आप गवाए के कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृद।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे अज सरन साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही सब एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया हो है आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन पर फड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन मल्हार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल।

राई। शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाई। कान हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह न सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै सबद पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुरु प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुरु सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पै खंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभ तेरा, चौदिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालं, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर फाथी जाल, अलख ना जाचे हृदय समाल, रहाओ एक जी कै जी आखाही, जलत तरती बूढ़ी जल माही, सर्ग जी की ए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फांस पड़ी अत भारी।

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजे ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

है। हर सिंह रहा समाये, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महा पतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल

मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानी है गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानी है साज साध संग

आपस को आप मिलाया, कम पंजन हर राया, अचरज स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया, महा मंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणी कैलाश तथा मालदे की तुन, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा। गुर मिले मन रहस्य, ज्यों उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर करे सबर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल, कमल विग से सच मन।

तन सुख बसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंग दै लाए आप छपाया।

संतै चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिरलेख विन कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण स्वभाव खाणिए। नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग। रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए। नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न होए। महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग। नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया। गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुद

वर्षे लाए झड़ी नानक पाने चले कंत के सो माणी सरार अली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपने इसमें गए हक किसना।

नजर करे नानक नजरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरे भी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे कर ले अंती वार एना जनता नो हो सेवा नहीं सतगुरु सिर करतार। श्लोक महला तीजा बाबी हा जिसनो तू पुकार दा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी वन तिन हरया होए गुर प्रसादी पाईए विरला बूझे कोए बैंदिया उठदिया नित बिहाईए सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही।

लाए। सच्चे सुनिया कन दे तीरक देवे सह सुवाए। इंद्र नो फुरमाया गुठा छ बरलाए। अन तन उपजे बहु कणा कीमत कह न जाए। नानक नाम सलाए तू सबना जिया देदारी समाए। जित खावे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मिलाए। दूजे दूजी तरफ है पूर मिले ना मिले।

लिवलाए, जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

तिस बिन अवर न कोए। गुरुमुख हर प्रभु मन वसे ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल न हो गई सब चिंता विचों जाए। जो किछ होए सो सहजे होए कहना किछु न जाए। सच्चा साहिब मन वसे ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार। गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए। गुर के शब्द विचारिए गुण में रह समाए। अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए। किसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हों बलिहारी गुर अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए। जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवे।

समाए नानक जिन को नदर करे ता इह तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो तिस पावे सोचिए हुकम करे गावार आप छदाए छुट्टिए आपे बक्षण हार आपे वेखे सुने आप सब सहदे आधार सब में एक वर्तदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनो आखिए आपे देवनहार श्लोक महला तीजा बाबी हां इहो जगत है मत को परम पुलाए इहो बाबी हां पशु है किसनो बूजन नाहे अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए महला तीजा मनार शीतल राग है हर प्याए सा

प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख।

संत धामिया दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, गिणना में बाजारिया पिहावल होई, पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, और गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कह काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अवगन यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी।

सच्चा सतगुर सेव सत समालिया, अंत खलोवा आए जे सतगुर अग्गे कालिया, कोई न सके जम काल सच्चा रखवालिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया, मन मुख विण नावे कूड़ियार फिर बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया, सबो वरते सच सत्य सगर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा, बाबी है हुकुम पछाणिया, गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षा दया कर गुड़ी छह बरलाए, बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सोसा लाई है ये दिन दा सबना जिया, रिजिक समाए महला तीजा, चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए, दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए, नजर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए, नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए, पौड़ी एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही, एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही, एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही, एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही, गिणना में तन छार क्या कह रो वही, सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा, बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार, हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा, बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार, नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरो खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया, हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया, तिन जात ना पच ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया, बिन शब्द आचार ना

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंज सै दाना खाए। डके फूके खेह उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी। अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सत्ता शिव मारे सह मिरिया सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अकड़ा अकडाली बै खाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख की तै दुख होए। गल्ला वाले हैं कनेरे छड़ ना सकते कोई। मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे। तिन पौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू तनी। सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते टिको देवन हार। जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार। इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार। गुर के शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार। विन प्रीति पगत न हो गई विन सतगुर ना लगे प्यार। तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ताड़ी करे पुकार। जेहे दान संतोखिया।

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख ना जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुरु बूझ ना पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सर्व कर्म दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडिये जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाम फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़िये जाए तन लगे दुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख रूपी पुख ना उतरे जा देखा ता पुख

प्यासी है जा टुटा पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुल्हा ना हाथ नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ महला पहला लखमन सोयना लखमन रूपा लख साहा सिर साहा लख लस्तर लख वाजे नेजे लखी कोड़ी पाप साहा जिथे शायर लंगना अग्न पानी असगाहा कंदी दिसना आवई ताही पवे कहाहा नानक ओथे जानिए साहा के ही पाप साहा पौड़ी इकना गली जंजीर बंदर बानिए बदे छुटे सच सच पछानिए।

गया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाहो, मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सिकदारा, इना पर्याना

एक चशे में लख सबको नखे नथिया बक्से तोड़े नख वरना चेहना बारा लेके बाद अलख क्यों कठी है क्यों आखी है।

रास आप छुटे न छूटिए नानक बचन दिनास महला पहला मास मास कर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंगा मार होम जगती है देवत्या की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने हर कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंदेशों क्या कही है कहे ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस न खाही।

तू है मन भाया फाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

कहीं हापियो कहो रविदास कहो जल देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे।

हूँ बलबल बलबल सात जना को मिर संगत पार उतरे आ रहा हो। हर हर कृपा करो प्रभु अपनी हम सात जना पद परया तन तन साध जिन हर प्रभु जानिया मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वस गत करिया जो जल तंत पसारे बगत ग्रस मीना वस गत करिया। हर के संत संत पालनी के मिल संत जना मल रहिया हो मैं दुर्ग गया सबनी कर जो साबन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर गुरु सतगुरु चरण उर धरिया सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल विख दैन पए किन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव। नाना रूप रंग हर के रे, कट कट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन उतारियो हर रस कृसाक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक। हर के संत जना में हर हर, ते जन उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुस्की मुस्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक। जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंधप हर साक। कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम।

जय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करें जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुरु सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम कृपा

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित विकार सुख पाइये हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार आस

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण नाबू जी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल सहु नानक कौ।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत का पेखो आयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथायो, ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यो परदा लायो, गुरु प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाज समायो, कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उदाहरण आयो, रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग पै मन निर्मल।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ

साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी देखी, सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नै तृप्तानो राज जो बन तन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुन गाया। बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ। सगल आप होत पूरा।

सतगुरु प्रसाद। कतिय संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाई है।

पंजवा साध संगत निध हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ। संत रेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल विकारे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कार है, कानड़ा महला पंजवा, ना जानी संतन प्रभ बिन आन, ऊंच नीच सब एक समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ, कट कट पूर रहे सुख सागर, पै पंजन मेरे प्राण, मने प्रगास पयो प्रमनास्यो, मंत्र दियो गुर कान, करत रहे कर्तज्ञ करुणा में, अंतर जामी ज्ञान, आठ पहर नानक जस गावे, मांगन को हरदान, कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कतेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनग उजियारा तय समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाया।

अंधकोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोकत कपट खपट खल गर्जत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगने रे, नैनो देख साध दर्शे रे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाल।

बरना साकू एक फुलेर है, दर्शन प्यास बहुत मन मेर है, मिल नानक देव जगत गुर केर है। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

थियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

पतित पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद शरण आस पूरन दुख विनाशन।

कनिक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुल

गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा।

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जप

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुख कर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञाने लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो।

मिल सतगुरु नाम सियावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मन लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निभ रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुर दाता।

था मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे।

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड नावे, दिख चार चार लिव लावे गो, स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख तर्म आन राखे, हर नगरी हर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यों गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाल, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया, जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरुमत ध्याय सादर गए पाए मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोल।

नानक गुरमुख हर साल आया, तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना, तू कट कट हर रंग रंगना। सब त्या मैं तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाते सब मंग मंगना। सेवक ठाकर सब तू है तू है, गुरमति हर चंग चंगना। सब कहो मुखो रिखी केस हरे, जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन, हर दरगे पावे मान। जो इच्छे सो फल पाए सी, गुर सब दी लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटिए, हों मैं चुके गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म।

रंग परंग सिस सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावनी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमति सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुर तुठे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

हर खेल किया हर आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावे तुद सफल से गावे, गुरमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपें ए आनिया, हर तुम बड अगम अग

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सबदी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुवर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा। सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा। जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमति। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम से आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग। गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन वित्तो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस तसिया हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभ मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभ सुमरे, जन नानक के प्रभ समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुख हो में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तेरा खे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन

हर सेवा से काल जो न साके चरनी आए पवे हर जाने जाको राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पहकाने ताको कोई अपर न साके जाकी भगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विडान देख जाने।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सदनव तन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सदसंगी। कल्याण महला।

नाम जपत तै पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान पुगत, सुरत शब्द तत बेते, जप तप अखंडली, ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन विद ताकी कहां करो, तर्क ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापी है भगवान गुरु पूरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत।

रहाओ, हर दिन आन ना कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान, सर्व कटा के दाते स्वामी, देसो पैरन खान, सुरत मत चतुराई सोबा, रूप रंग तन मान, सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण, कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ, साध संग जपनि संग, जम काल तिसना खावनो, मुक्त जुगत अनेक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रभ दर्श लुभत दास नाम।

मत्संजम काड कटी जय। राम नाम है जोत सवाई तत गुरमत काड लई जय। नौ दरवाज नवे दर पी के रस अमृत दसवें चुई जय। कृपा कृपा कृपा कर प्यारे।

जय हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिल दी जय। राम नाम तुल और

हम निर्गुणी मनूर अति सीखे मेरे सतगुरु पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जोत

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छी जय। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म।

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमते ज्ञान दृढ़ी जय रहाओ। ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

यो पीप पलास खाए ली जाए। सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए। निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित साखा हरी जड़ी जाए। परम फुल फल गुरु ज्ञान दृढ़ाया, बेकार

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण करी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल बिख दहन हो खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय। साकत स्वान कही है बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कदी जय। परम सुखे बहु उबसुख कही है, मिल साधु संग हरी जय। काते बिलम

दुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवि जय जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महासंख बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम राम राम राम राम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला माए

समय पच कब होना होए। अवर सियाणत सगली पाज जय बक्से तै पूरा पाज रहाओ। नौ तेरा ताण नौ दीवान नौ तेरा लश्कर नौ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत दिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए। नारी बेरी कर बरदेस मन किया खुशिया की चैवेस जा सदे ता टिल न पाए नानक कूड़ कूड़ हो जाए। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोए। त्यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करणहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर। दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित तन नाम ना उपजे से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई रहाओ। अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा। जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतिया चंगियाईया दे न पछोतावे। तुद सलान तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई

पुरख समझाई, संत को परम संत मिलिया, नानका बुद्ध पाई, प्रभाती महला पहला, कांका तहया दर परवान, दिख अमृत दो समकर जान, क्या कही है सर्वे रहा समाए, जो किछ वर्त है।

सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टपद तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जासी वास बनास पत सौर है पास चरण लिव रही है गुरुमुख जी प्राण उपजे गुरुमुख शिव कर जाइए गुरुमुख नानक सच समाई है गुरुमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देह अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिस विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने

और न करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंप के यो रहा निर्वाण, जिससे हुआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। हरवाती महला पहला, दिस्त बिकारी बंगन बांधे, हों तिस कै बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई, बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

प्रवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन

पाया मन पंखी आकाश, तस्कर शब्द निवारया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। जन्म मरम दुख काटी है नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा। हासा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे कोंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर कर्मी मिले वडाई। दिन दिन आवे तिल तिल चीजे माया मोह।

कर्महीन सच पीछिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा। रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के शब्दे दर निशाने। कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं लो उजल सच कोए उत्तम आख न ऊंचा होए। मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार। तू बक्से जात पत होए नानक कह कहावे सोए। अरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबलो चाग सहज परगासिया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जम गरबा दे मारिए छूट सा चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो गुरु शब्दी विचार। ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जड़े नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रहस रंग सुरमाइस पाई पैनन खां चीत न पाई। सात सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किचना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

स्वागत करी कराही मोर, अंतर वसे चूके मैं मोर, किससे भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर दीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रंगन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल विगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदु से मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभ पाया। अत रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रब रहा प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला, बारह में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछिया जाची, एक पाए लिवलागी। रहाओ ब्राह्मण वाद पड़े कर क्रिया, करणी कर्म कराए, बिन बूझे किछ सूझे नाही, मन मुख विच्छेद दुख पाए। शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगे माने, हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साथ समाने। सगले कर्म कर्म सुख संजम, जब तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशित काल नसे। करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर कीरत करतारी, कहा करे बपुरा जन बरत, गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना। रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान त्यान तन साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे। सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम करावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे। सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया। राग करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमुख विरला कोई बूझे, शब्दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई। हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई। रहा हम दिन पवित्र करो दिन राती, इस जुग का लोहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चितलाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई। आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई।

हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सह समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर तृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई सर्वाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान शे साध पाएन।

ना सो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करे प्रतपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, ओ ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाए, नानक नाम सलाए सदा तू, सच्चे शब्द समाए। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हर रस्ती जय रहाओ। मूल पछाणन तिन निज करवासा, सहजे ही सुख होई। गुर के शब्द कमल परगासिया, हों मैं गुरमत खोई। सब नाम एक को सच वरते, विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ, अमृत तत्व खाने। हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने। सब बलिहारी गुर अपने विटो, जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग से आया। प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया। कर कर वेखे करे कराए, सर्व जियानो रिजक दिया। कली काल में रव्या राम, कट कट पूर रहा प्रभे को। गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ। गुप्ता नाम वर्ते विच कल जुग, कट कट हर पर पूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया, जो गुर सरनाई पग पया। इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे। सो तन तन हर जनवड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे। गुरते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे। कर आचार बहु संतोषं चे, जो किछ करे सो नरक पड़े। एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक से उत्पत्त चले। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख

हर हर जाए रलै परवासी महला तीजा। मेरे मन गुर अपना साला है, पूरा काज होवे मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाओ। अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे फाचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एओ आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा, सोई तगत सुगड़ सुजाना, नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर भायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान, कित विद क्यों पाये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर बान। सत संगत में हर हर वस्या, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान। प्रवासी महला चौथा, उगवे सूर गुरमुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी, मुल्फा से माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, ऋण बादे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद पाई, हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा, एक खिन हर प्रभ कृपाधारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत बहु पे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक, हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यो विच उडवा सस्तीक। जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन सब कारज फीक। जैसे सिगार करे देह मानुख, नाम बिना नकटे नकीक। कट कट रमैया रमत राम राय, सब वर्ते सब मैं एक। जन नानक को हर कृपा धारी, गुर बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा, अगम दयाल कृपा प्रभधारी, मुख हर हर नाम हम कहे, पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किल बिख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बसयो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो, कर मंदर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उद्याने, ते साकत मूड मोहे, जो मृग ना भी बसे बास बचना,
तंत्र में ओचार गए तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीर हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप सोबा गुरमुख कर पुफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपो हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा प्रभाती मैला चौथा गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर धांबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभासी विपास करताल महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठहत न जान सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहा कातर पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल फल मीत सोहर सेवो नीता नीत कहा सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक खिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे किरत संजोगी पाया भाल साध संगत में बसे गोपाल गुर मिल आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मुरार प्रभाती महला पंजवा प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा नाम तेरा जन के पंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा जो जन राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग
जिस रस आया सोई जाने, देख देख मन में हैरान है, सो सुखिया सबसे उत्तम सोए, जाके हृदय बसिया प्रभु सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभु के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहि निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए, बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी, गुरपूरे की अकथ कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव, प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुख मिटाया, हम बारिक शरण प्रभु दयाल, अवगण काट किए प्रभु अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल, राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी, अपने सतगुर के बल जाई, अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत न पाये, लाहा खाट होइए तनवंता, अपना प्रभु ध्याइए, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सगना से, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगह शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे, अज्ञान अंधेरा मन ते जाई, रहाओ जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम सो लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो फल होस, तिस गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम दियाई, ऐसा गुर पाये वडवागी, जिस मिलते राम लिवलागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, आठ पैर अपनी लिवलाए, जन नानक प्रभु।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रभु गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए।

मन तन अंतर बसे गुरु चरना, निर्भय साद परे हर सरना, अनद सहज रस सुख घनेरे, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, गुरु पूरे अपनी कर राखे, हर नाम जपते किल विक्षव लाते, संत साजन सुख भय सुवेले, गुरु पूरे प्रभ स्यों ले मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहु नानक गुर पर्दा टाकिया, प्रभाती महला पंजवा, सतगुर पूरे नाम दिया, आनंद मंगल कल्याण सदा सुख, कार्य सगला रास्ती आ रहा।

गुरपुरा पाइये वडबागी, दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ। किलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता से आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहां उहां चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे पर पूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन सिंह हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए।

बिन सतगुर के ते कोई न जानी, सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत गुरमति पाए, होमे विचों सबद जलाए, तावत राखे ठाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए, जिस्म बिनोद रहे परमादी।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख ने तहारा, हर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार, मूर

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाए तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संताप।

पयाल जाए क्यों चलिए, जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती। ब्रज व्यास पराया तिनकर जग अठारे काए, कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना। बोली पाए सुवाए जो किस वर्ते तुरे सवाही, सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे। सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चिते नाही, दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता। जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना जाई जियो, अभिमानी पे पचिए फुलन विच किया सब कोई। करता आप न भूलै

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो मैं विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

गुरु का शब्द करनी है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक

समाए एक सिरकार से सतगुरु दिए मुक्त आना हर पद चीन कहे परदाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई नाम बिना गत किने न पाई प्रभासी महला पहला एक तुर बख्श लय गुरु पूरे सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख विसरे पत पाई सूठी गुरमती चतुराई दिन सत बार न लागे काई रहाओ मन मुख को दुख दर्द वे आपस मन मुख दुख न जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई मन मुख ते अब पगत न होवस हो मैं पचे दीवाने इहो मनुआ खिन ऊब प्याली जब लग शब्द न जाने भूख प्यासा जग पया तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए सहज सहज मिले सुख पाये दरगे पैदा जाए दरगे दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचार से आपे बूझे पद निर्माणी जल तरंग अग्नि पवने फुन।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाय हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार इस विच सौदा एक नाम गुरुमुख लैन सवार हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाई पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरुमुख बन जिए सच्चा सौदा होए प्रभाती महला की जा कह पाए जागे से जन जागरण करें होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का डैमार मन मेरे गुरुमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरुमुख सहज तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने हर राख्या उधार ऐसे ओथे सुख गणा जप हर हर उतरे पार होमे विच जागरण ना हो वही हर पगत ना पवई थाए मन मुख दर टोई ना।

त्रै सुहोग विपास प्रभा तीन ऐला पंजवा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज पर्यो मन

लाए तू ठाकुर इहो गृह सब तेरा कहो नानक गुर किया निबेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध म

ता गांडा जब कब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करी जा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपते सब

कपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गय लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

लोगा भर्म न भूलो भाई, खालक खालक खालक में खालक, पूर रहो सर्व ठाई रहाओ, माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे ना कछ

तेल नाम किया वासी, दीपक देव जियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा,

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलस बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

हृद अंतर पर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निष्बादं रहाओ।

तिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्रासन रे लंपट कृष्ण अवासन जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या

विहात है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

तस्य जन्मसे जावद्ब्रह्मणा विन्दते सागरं संसारस गुरुप्रसादी तरेके।

निताब विनोद सुटे कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं तेखंते त्यागं करोत।

कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे नृत मोहन अलक बुद्धन रतंत बनता दिनोद साहन जो बन बेहतर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत वस्त्र।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समो अम

बते विपरीत बुद्धन मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचते जिन कला धारो आकाशन बैसंतर काशत बैसतन।

ਚਾਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹਿਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ।

परम बारं आवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान धिग जनमने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

करेन चित्तो जाचा अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग के तो अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती, दैदिस चमके भी जल मुख को जो हती।

छुटाए। जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्बे, मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देव सरबे। मूसन

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश नरक परे।

अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले पर बात जो न

काल पाछे कछु न होए बात, जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया, जैसी तोई लाख। दिसे चंचल बहुगुना, मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जान।

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर के सो कुकी है ना सोई है सारे।

केवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख को श्री पारख आगे खोले, कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जाने।

जीवंते पंछी चले दिशावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि हूं ते आदे।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें खाद तिरम की पाके से तू खेले, काटी सरसों तेल कह ना फल पई ना तेल। कूंदत डोल है अंग गत हर चीनत ना ही संतो, कहनामा क्यों पाए बिन भगतों भगवंत।

हल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम राती वड्डियां सुख उठन पास सिज दिना दा जीरिया दिना विदानी आस सरीदा जे में होंदा वारिया नित्ता आयरिया खेड़ा जले

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

नबी वाके छप्पर तू मैं क्या होए चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारावियो वड्डी सी मोई आके।

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया की चलसी थके कवले कल। फरीदा इत सिराने तोए सवन कीड़ा लड़ो मास केतड़े।

खरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आती है जा किस दिन कोई नाही खरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इती मामले सहाना इती दुख चबन चलन रतन से सुनियर गए गए हेरे मुक्ति पाके जानी चल गए खरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाज। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना पाए तो भी लेखा देवना जे तार रब रजाए वैन चिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपर रात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कपर।

अजय सुरग न बहुड़ियो देख बंदे के पाद पादा तरंग तंडोलिया सगला खाया मासे एगे लेना मत हो फिर देखन की आस सादा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न पिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला तज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सो मिले से वेश करे ओ। महला तीजा काए पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक कर ही बैठिया सब मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरयो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा में मुमताज

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको मदर करे, जे किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है तोरे फाही वाल पचास, तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कम से अखर कम गुण कम सुमणिया मंत, कम सुवे सो हों करी जित वस आवे संत। निमन सो अखर खवन गुण जो बामणिया मंत, के त्रै तैने वेश कर ता वस आवी संत। मत होंगी हे आना ताण होंदे हे निताना, अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी, ह्याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन।

सर भरयो भरपूर सगल घट रहो व्यापे। व्यापक देखे जगत जाने कौन तेरी गते। सर्व की रक्षा करे आते हर पते।

नहीं तुम भक्ते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर कुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलहार अमृत प्रवाह कर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उपत कर लो एक निमक तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है। हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो, सचे सत निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

हरन सुख तिन हो पाए, हर गुरु नानक जिन परसो ते बौड़ फिर जौन न आए। कौन जोग कौन ज्ञान ध्यान कौन विदेव सत करिए, सिद्ध साधक तैटी सिकोर ते कीम न परिए। ब्रह्मादिक सनकाद सेक गुण अंत

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते धर्म अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

के काट भरम भरे। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल ब्याल सतसंगत नामिक जगे जानत सुपना। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो मादारो। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जातिर दे न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर।

मित्र न पुत्र कलश साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपद नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन एबिद करत फौज तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी। पस पंखी बिरख अचतावर बहुत जोन भम्यो अत भारी। छिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस दे

जम को तन धन मृत मरो है, अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गरो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के, कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी, औषद मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा बिन सजाए हर।

अनुशास बहु खटुआ भस्म लगाए तीरथ बहु घमते सुखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावती ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात खाते कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता।

गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान भरे। गांधराज भगत प्रहलाद आत्मरस।

गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मागत समरंत गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत ले

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस नाम।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो।

जात दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरी भूत सदीव परम प्यारे कौटीरत कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर सुमुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञान जाने अकलगत गुरु परवान जाके दृष्ट अकल ठाने बिमल बुद्ध सुठाने पैर सील सना।

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार, दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवस करण शरण जाचक प्रत पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अम

हर परसो कल समुल रहे जन दर्शन लेने भयो मन विसास पायो गहर गो हजरत दियो गरल नाश कन नठो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिना से जागयो अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम सम

नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो, सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच, सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर, सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने। दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी, हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सदै बल, सदा सुख मन

चीजों को एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसार जिन भगत भग

तीरथ राव तिर प्रगट संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

सोईनाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरया चित नाम लागते तीस ध्यावे जति सति सर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे उतामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुरतर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुर अमरदास तें पायो नाम ध्यावे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुर कुछ दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

सुख पायो अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए।

मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग राखो मस्तक निशान सचो करम पल जोय कर भायो परसो गुर सतगुरु तिलक सरब इच्छ तिन पायो चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

सरवण गुर अमर सुन जाए सत सो ही ओ जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर दुख ने भुके ते नर निधन लौके ते नर शोक न हुए ते नर से

सुपन एक पर तख एक एक समेनो तीस एक अर पंज सिदे तै तीस नखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जालक भणे तू एक लोने एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे समानी जे मत लोचन चित

है जालपा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद नैना।

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरण गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल।

नानक कुल मल अवतरो गुण कर तारे उतरे। गुरु अमरदास जिन सवेओ तिन दुख दरिद्रे।

जब गुरु देखे सुगदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरु अमरदास कारण करण जिम तू रखे त्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान।

धर्म धन कर गयो भगत सीने कर लड़यो धन निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग गयो काम क्रोध लोभ मोह।

सागर को दंड तरंग अंत को पावे। रुदन ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दासने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरात, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण शकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़ो।

निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित

प्रेम भरत परवाते तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृढ़ जन दुख पाप पौकत होए जियो। तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो। जीवन शब्द दाता अगम

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लेव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल तो पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके दे।

सर पाँव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो सकन खन ससुर दिन सैर करो फल फूल दियो सुर नर सपत सम

आयो शबद गुर सरवणियो सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर।

मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास पियो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोर से बासन सुजो दंज सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो मन दास आस जगत गुरु की पारत भेत परस करो रामदास गुरु हर

सानियों सबद हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुरु रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

पूरे गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

का ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

स्नान करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वरनं। सतगुरु गुरु सेव अलग

देनियो भले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुवर नय कलंक बजी डंक चढ़े दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बरा

सच जान मंत्र एह नित बातुर स्वयान लहे परम गत दियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन संसार धो हमें का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत दियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

ही पाता गुरमुख संगत सबे विचारो। वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सतसंगत से टी मन खचना किया खेल बड़मेर समासावा है गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गए किरिया धू बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे साज तू और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले धारण।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आगर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

कर गए तेज पुंछे लोक प्रजा से। देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे। विद्यमान गुर आप।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन कर सकियो ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा।

सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सोजस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल्पहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

0: नाम रतन प्रगाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्ते फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरुमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथ है ऊंग न पुख है हर अमृत नाम।

भेद है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों में अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

माए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं गया।

सतगुर पुरुष निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है।

हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

सो मन ना वस्यो गुणतास, ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास। मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास, गुरुमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उर्धारिया हर हृदय कमल प्रगास, सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास। नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास, शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई। पेख तरह बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई। हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सके जे सो लोचे कोई। मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई। अंतर आय वसे गुर शब्द विचार है कोई, नानक शब्द मरे मन।

उरवार न पार है। आद विच रहे लपटाए, जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए। गुरमति ज्ञान रतन मन वसै, सब देखिया ब्रह्म सुवाए। नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़े, ते पौजल पार लंगाए। बिन सतगुरु दाता को नहीं, जो हर नाम दे आधार। गुर कृपा ते नाव मन वसै, सदा रहे उद्धार। तिसना बुझै तिपत होए, हर कै नाए प्यार। नानक गुरमुख पाईए, हर अपनी कृपा धार। बिन शब्द जगत बर लिया, कहना कछु न जाए। हर रखे से उबरे, शब्द रहे लिव लाए। नानक करता सब कित जानदा, जिन रखी बनत बनाए। होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण। बिख माया मोह न मिटई, विच होमे आवन जान। सतगुरु मिले मल उतरी, हर जपिया पुरख सुजान। जिना हर हर प्रभ सेविया, जन नानक सतगुरु बाण। माया मोह बहु चित्व दे, बहु आशा लोभ विकार। मनमत अस्थिर नाथिय, मर बिनस जाए खिनवार। वड पाग होवे सतगुरु मिले, होमे तजे विकार। हर नामा जब सुख पाया, जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुरु भगत न हो वही ना।

सह हस न पाए, मन मुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किथा उपाए, बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा भो पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सि सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदे पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पत के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, इक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिनको सद बलिहा रह जाओ। से दालियां सतियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनद रहन। नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार, गुरु मिले शीतल जल पाया सब दुख निवार।

साई पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सह चवाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास ना जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा कितना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगे की चै अरदास नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस नाव लिये परमेश्वर पन्नन करण समरथ हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार हों मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईंदा अंदिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार नदर करे जे अपनी ता आपे लह सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक कर बैठिया जोग पाईए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पढ़े जुग चार नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित पुलिया आप समझाए थी।

सत्संगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मेल आए। यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम सराए। गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर तूर दे हम पापी भी गत पाए। गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए। जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए। गुर सिखा नु सावास है हर तुखा मेल मिलाए। गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया। हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया। गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया। सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाए लाया। जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई जिन्स रात। हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई। सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है। गुर सतगुर के गुल बोले।

सुतड़े असंख माया चूसी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख पुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सृजनहार दूजी छोड़ कुआटड़ी इक सोचित लाए दूजे पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन मन जा रहा सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंखा प्रेम ना जाने पूली सिरे गवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरकंधार माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चितना आवई नानक नहीं करम चिचर मूल ना छुड़ी दो जिचर आप कृपाल शब्द अकुट बाबा नानका खाए खर तन माल खंभ विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल सज्जन सच्चा।

जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो तम संसार चरण लग तरिये।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैर ही बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

दुतिया माल कौशक आलापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गा

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक।

बहादुर कथना कथी न आवे टोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा

कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया सुमाई।

दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई ना सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोहे ना सकै काल, नानक

हाथ हुए असगा नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का वह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मुहि चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाए।

दरियाऊ कुदरत कमण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ।

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव

तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होय, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कमण सुवेला वखत कमण, कमण थित कमण वार, कमण से रुती माह कमण, जित होवा आकार, वेर न पाइया पंडती,

होई जा करता सिर ठीक ओ साजी आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आख

आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिया लेखा हुए बनास नानक वड्डा आखिया।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोई बहुता कही।

फुरान, आखह पड़ी करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वरे आखह सिद्ध, आखह केते कीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे, ता आख ना सकह केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद

गावन पंडित पन्न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबल सूरा।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राह पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पा

जोर जोर लगी मन मरन नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाई। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में कार्त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध।

वेद हथियार पवो खला अग्न तप ताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिये शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत।

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले

धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

ब्राह्मण तुदनो पंडित पंडर खीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजाई।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया, तुद मिन सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरण।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया,

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक।

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा।

सो कर राख वडाई तोय रहाउ। विसे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल। रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुह को। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन। सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत इस भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

साखत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही, जो जो चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडाही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अवनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए प्यावै इहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरु।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर कुं अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला।

आस जित बोले पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

जित सेवै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान। रहाव सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम। सुनह वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहार जाऊं। ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं। नाव नीर चंगियाईया सत परमल तन।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छत्ती ही अमृत भाओ एक जा कौ नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादै तन पीड़िय मन मह चलह वेकार रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर

केता आखण आखिए आखण तोट ना होए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्य सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखिया हर जप एकै पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचौ थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी,

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौ निध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

गुरमुख नाम सलाही है, हौ मैं निवरी पाही रहाव। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली, हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा, गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी, लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया।

जित घर जाई है तित जीवनिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाई है गुर विचार अनहद बाणी पाई है।

हर दरगाह पैनाई मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसे सच भै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान लो

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सोभान ऐथै धंद पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी परदा।

रूंग वड्डा मन माही क्यों दरगाह पत पाई जां हर ना वसै मन माही गुर मिले सुख पाई अगन मरे गुण माही मन रे अहल सहर गुण सार जिन

आपे रसिया आप रास आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

किरखा करे इन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बी।

तू ओ नाका तेरे ओहे, असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजो घटे घट काट।

आपे वेखै सुने आपे ही कुदरत करे जहानू जो तिस भावै नानका हुक्म सोई परवानू श्री राग महला।

अपना एक मन एक चित पाए, सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए, नाउ त्याय नाउ।

अस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करह नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे। हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना कमाए। जो प्रभ भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन

खाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार। लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जणेंदी माए, हर हर नाम ते आई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, विचो हो आप गवाए, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, हे मन आलस क्या कर है, गुरमुख नाम त्याई रहाव, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे तरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अनदिन नाम त्याय रहाउ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाय। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मन परी हूं मैं।

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मनमुख मन तन अंध है तिसनों ठौर ना ठाउ। बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ। गुरमती घट चानना

पाई। लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होय। ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाईए सच सोय। असुर संगारे सुख वसे जो तिस भावे सो होय। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होय। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोय। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होय। श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लुवाणी। सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही। अन दिन दुख विहानी मनमुखी अंध ना चेतही। डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत।

फल पाए। जात सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल जाऊं। दर सच्चै सच्ची वडियाई।

संतां संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर तार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरै भाग सतगुर मिले जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजी पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम ते आई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमावंदियां सेई कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साच वडाई दे भाई रे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई है जे लोचै सब कोई रहाउ लख 84 फेर पया कामण दूजै पाई।

आई देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे परम पलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

अत सबल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती देश जाए नानक नाम लगे से उबरे

अगली मनवा रज्जा सहज सुभाय गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवे जाय नदर करे।

सच्ची बाणी हर पाई है, हर सिउ रह समाय रहाउ। सच्ची भगती मन लाल थिया, रत्ता सहज सुपाई, गुर शब्दी मन मोहया, कहना कछु ना जाय। जिहवा रत्ती शब्द सच्चै, अमृत पीवै रस गुण गाय। गुरमुख एहो रंग पाईऐ, जिसनु कृपा करे रजाय। संसा एहो संसार है, सुत्या रहन विहाय। एक अपने भाणे कढ लयन, आपे लयन मलाय। आपे ही आप मन वसिया, माया मोह चुकाय। आप वडाई दितियन, गुरमुख दे बुझाय। सबना का दाता एक है, भुलिया ले समझाय। एक आपे आप खुआयन,

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग हों मैं मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हों मैं धोती किवें ना उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

गुर सरणी आवे ता निर्मल हुई, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाव, मन मैल भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआई, गुर प्रसादी मन वसे, मल हम मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मिले सो मिले, हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाऊं, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाऊं, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माही समाऊं, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए, जां देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए रहाउ, सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोए, हम गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए, सहस सियाणप कर रहे, मन पूरे रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो।

थीए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेट्यो, से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पुआई है, विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पीती है, जिने अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडारे रंग स्यो आऊ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं जिन्नी मेरा प्यारा रावया।

दिल मलाए। हो सतगुरु बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास। हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोई। बिन भागा दर्शन ना थीए भाग हीन बहर होए। जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोई। आपे सतगुरु आप हर आपे मेल मलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला। कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो हो सोहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार। रहाओ गुरमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आई। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाई। से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाई। एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाई। बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाई। ओए सतगुर आगै ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उभरे अलिप्त रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हरे आप लए गल लाए। गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवा कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार। बहुत करह परमायसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटा।

रहाउ। दुख भुख नहि व्यापई, जे सुख दाता मन होए, कित ही कामना सिजी है, जा हृदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे, तिस मार ना सके कोई। सुख दाता गुर सेवी है, सब अवगण कड्डे धोए। सेवा मंगे सेव को, लाइया अपनी सेव। साधु संग मसकते, टूठे पावा देव। सब किस वसगत साहिब है, आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहार ने, मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो, इको भाई मीत। इक सह दी सामगरी, इक सह दी है रीत। इक ससियों मन मानिया, ता हुआ निह चल चीत। सच खाना सच पहनना।

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ति जिस लिखिया हो है मत मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवा सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपा छड कै गुर की चरणी पाह मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ आठ पैर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिए जम की फास सुखदाता पह पंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास बहुतो बहुत वखाणी है ऊचो ऊचा थां वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाओ नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाओ श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सहाई

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमे ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार।

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको, थान तनंतर आप जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान तनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई, किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए, जिन मन वसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान, जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसया मन आई, अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाई, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय, मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई, रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान, पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जे मिले पाईए शब्द निदान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए, रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है सिर शाहां पातशाह, चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाओ, मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ, नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो, मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै,
सब मह रहे आसमाय। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाय। अचरज रूप निरंजनु गुर मेलाया माय। भाई रे मीत करहो प्रभ सोय। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय। रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार। जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात। सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद। किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया। रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उरतार। मेरे मन हर बिन अवर ना कोय। प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय। रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक। मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक। जिन की तात सह ना जानी मन मुख पास न पाक। अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर। तृष्णा लागी रच रहया अंतर हो मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर। राख ले हो प्रभ करन हार जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस। सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख। मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी। गुर चरणी चित लाए। रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होए भाग। कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग। कर संगत तू साध की अठ सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआउ। एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ। करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागती सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल। सतगुर कै अपदेसे है बिनसे सर्ब जंजाल। अंदर

प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु।

आस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाऊ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाय, मेरा मन तन भुख आते अगली, कोई आण मलावे माय, चारे कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडार, सदा सदा सलाही है अंत न पारावार, परवदगार सलाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा हारा दी है एहा मत वसेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख, श्री राग महला पंजवां संत जन

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

किस है त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना।

आधारै पाप सगली जाहि हौं तिनकै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल

मान अपमान मंदी सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांची है तितड़े सत गुर पास

तुद पावन सुहागनी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुबा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कह हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जां धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी

शब्द पछाणिए साच रत्ते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हों किन कै बलिहार नै दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावै चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिय सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हों वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई।

सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन कामना आवई खोटी अवगणियार ना सुख पिए सोहरे झूठ जली बेकार आवन मंजन डाकड़ो छोड़ी कंत वसार फिर की नार सुहावनी मुत्ती सो के तसाद फिर कै कामना आवई बोले फादिल बाद दर कर ढोई ना लह छूटी दूजे साद पंडित वाच है पोथिया ना बूझ है विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की वेदां करह विचार वाद विरोध सलाहणी वादे आवन जान बिन

रहाउ गिण राशि वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार गिण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार बण जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

सोहु प्रभ जानिए साचो साच नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली

अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभवन ज्योत अपार हाट पटन गढ़ कोट।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लई मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मन मुख बूझ ना होई, सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई, वेद पकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास, चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर वसे हौ मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए, तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी, क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ, गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं, तिस बिन घड़ी ना जीवन।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उधार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको वडो वडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक।

सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनोह वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावे नार इकत ता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार किन मह उपजे किन खपै

लिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए, कार कमाव है सच की लाहा मिले र जाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाई, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसर मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले, पाइए रतन विचार मन दी जय गुरे अपने, पाइए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाइए, अवगण मेटन हार पाई रे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद ब्यास कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोई, सफलियो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए, गुर पंडारे पाइए निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार, पवजल बिखम डरावण ना कंधी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै का बोहिथा नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए, जिहवा जलो जलावणी नाम ना जपै रसाए, घट बिरसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए, मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ, बिन नावे धन बाद है भूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो काथ, आवे जाहे पवाई है पै किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों।

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जै

खवै दुध कौ खफण ना दे पापे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होय, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोय, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होय, निर्मल नाम ना विसरै,

अवर के करे कराय मिलिया कहा क्या मिली है शब्द मिले पति आए मन मुख सोजी ना पवे बिछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भलाई है।

माया परम भुलाई, परम भुली दोहागणी, ना फिर अंक समाय रहाउ, भूली फिरै दसंतरी, भूली ग्रह तज जाय, भूली डूंगर थल चढ़ै, भरमै मन डोलाय, तुरहु विछुनी क्यों मिलै, गर्भ मुठी बिललाय, बिछड़िया गुरमेल सी, हर रस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी, हर गुण नाम आधार, ज्यों पावै त्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुलिए, भेखी बहुत अभमान, तीरथ नाता क्या करी, मन मह महल गुमान, गुर बिन किन समझाइए, मन राजा सुनतान, प्रेम पदार्थ पाइए, गुरमुख तत विचार, सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे सेती।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुंच शब्दहा माहे वखाणिय बिरला ता बूझै कोय नानक वखाणे बेनती जल तल मही अल सोए अल्लाह अलख।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तैसो हुए

उपज होमे तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै होमे दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुखदाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुर

पाई रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवी, नाम न लागू पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र सुध हो जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर कै पाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाऊ। पंखी बिरख सुहावड़ी उड़ह चहो दिस जाहे, जेता उड़ह दुख घणी नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पए किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमा।

सोहनी गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चे सच्यार। आए से परवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदी नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजली।

गुर भगत है विरला पाई कोई रहाउ, सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाई, सदा फिर निह चल पाई है ना ओ मरे ना जाए, शब्द मिली ना विछुड़ै फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बूझई भेखी परम पलाए, गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाए, बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नु गई खाए, शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए, माया भूले सिद्ध फिर है समाध न लगे सुपाए, तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुगदा माया जाए, माया किसनु आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बाध है हम कर्म कमाए, बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाए, बिन प्रीति भगत ना होवई बिन शब्द थाए ना पाए, शब्दे हम मैं मारिए माया का भ्रम जाए, नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर सालाही है कर्म परापत होए, श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना, आपे परम पलाए मनमुख कर्म करहे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए, मन रे नाम जपो सुख होए गुरपूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई रहाउ, परम गया पौ भागिया हर चरणी चित लाए, गुरमुख शब्द कमाईए हर वसै मन आए, कर महल सच समाईए।

कह पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुर भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खत दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए,

पंडित पढ़ पढ़ वाद बखाण है बिन गुर परम पलाई लख 84 फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोई रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई। बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार, सहजे ही सूझी पई सच्चे शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरप

सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराध है।

शब्द समाय। श्री राग महला तीजा, सतगुर सेवे मन निर्मला, भये पवित्र शरीर, मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर, सच्ची संगत बैसना।

उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना जा।

बला नांग भूख की पीर दमड़ा पल है ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहु ना को करे ना किश होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार, पोथी गीत कवित किश

रस भोगण बिसथार बाग सुहावी सोहणी चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाई लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

घर पंजवा जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच पाया।

सिरे सिर तम दिलाया वेख की तायापना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिलिया है परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत भरम भलाया आपो तुद खवाया प्रताप लगा दुहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दुहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिने अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणी।

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाउ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोहे उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिन्नी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाणदा, दुइया कागल चेतना जानदा, हर इक तै कार लायोन, ज्यों भावै तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामै ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेंडिया, कन कोई कड ना हंगई, नानक बुट्ठा कुग गराउ जियो, हों वारी घुमा जामदा, एक साहा तुद ते आए दा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित ते आए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुरसिखा लहंदा पाल कै, पैर धुआं पखा फेरदा, तिस निव निव लगा पाए जियो, सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इशनान दड़ाया, सब मुक्त हुआ सै सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुनहो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठियां, तुसे आपे नयन छड़ाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रजान दा, सब सुखाली बुठियां, एहो हुआ हले मीराज जियो।

के स्वामी तार अनग्रह मन तन अंक समावे दखना सोहंदड़ो हबठाए कोई न दिसै दूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेख ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारिय जियो सिमरत सास ग्रास।

सारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सर्व कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ता

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद हो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमै चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजै लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले।

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मूख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

कै भूलड़ गंदे डुम पयास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो अंति अवसर लय छुड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी इन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नावे अग्गे आन निवाए। सलोक महला तीजा वेश करे कुरूप कलखणी मन फूटे कूड़ियार। फिर कै भाणे ना चले हुक्म करे गवार। गुर कै भाणे जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को शब्दे धरे प्यार। बिन नावे किने ना पाया देखो हृदय बीचार। नानक सास वाले सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। भलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे भाए प्यार। सतगुर सेवह अपना भवजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावह सच नाम उरतार पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाही कोई। हर आप बह करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करहो उस्तत जिन गरीब

हर का नाम उत्तम मन बसै मेट ना सकै कोई कृपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोई महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अन दिन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सवार नहार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मुख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया भौजल संसार सब औगण गुणी मटाया गुर आपे बख्शन हार पौड़ी हर की भगतां प्रतीत हर सब किछ जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म बीचारदा काड़ा अंदेसा क्यों कीजै जा नाही अधर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याऊ पापी नर हारदा सलाहो भगत हो कर जोड़ हर भगत जन तारदा सलोक महला तीजा अपने प्रीतम मिल रहा अंतर रखा उरतार सलाही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हित प्यार नानक जिस नदर करे तिस मेल ले साई सुहागनार महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पहे त्याया नाम हरे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हरे अपनी कृपा करे पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वडियाई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन हर भगतानो दे आनंद थिर करी बहालियन पापिया नो ना दे थिर रहन चुन नरक घोर चालियन हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन सलोक महला पहला कुबुद डूमनी कुदया कसायन पर निंदा घट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या

कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत निश्चौ मरना। रमैया जपहु प्राणी, अनत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै तां लागै भाव। परम भलावा विचों जाय, उपजै सहज ज्ञान मत जागै। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै, इत संगत।

मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराव हसै ऐसा तै जग भरम।

प्राणी जरा मरण भौ विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

ए नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव है गा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया पुछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहू रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

प्रीतम दसे तिस कै हों वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरे हर नाल देखा लिया हों सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रलई किसे धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हों सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश।

जीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवां, विसर नाही ए वडदाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिन सरहण ज्यो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही। सा मत दीजै जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवां। सिफत सलाहन तेरा हुकम रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावे, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह पतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला।

सह परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साद पाया सो नाही डुलाना तिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी ठा जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे दरदा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए।

लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब विद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर में है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो।

दया धारी तिन सिरजनहारी, जी जंत सगले प्रतपारी, मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त अगाए जीओ, वन त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया, करनहार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसै आराधी, मन की आस पुजाए जीओ, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा

तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे हास मनोरथ पूरन होवे टीटत गुर दरसाया जियो अगम अगोचर किस मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका पुलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण।

प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरी करतब तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जीयो, गुण गावत मन हरिया हुए, कथा सुनत मल सगली खोए।

तेह गुर प्रसाद मन तारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सोई।

गुण अगम अपारी गावत सुन तो सबे ही मुक्ते सो त्याय जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल बिख जावे।

नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भओ बिनसै हर हर त्याई है, जिन सेवे आसो पार ग्रामी, कार्य सगले थीए जियो, आए पया तेरी सरनाई, ज्यों भावै त्यों लैह मलाई, कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवा, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत प्रतपारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी, जे खिन मह सगल उदारी जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी,

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आप

चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा ढाहिया जीउ। मन पन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहिया जीउ। जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै। अपनिया संतां नू आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहिया जीउ। चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू। सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहिया जीउ। माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है। सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है। सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाणो जीउ। सच वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई। त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीउ। सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

पवो परम खोया गुरपूर देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निद नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो। माज महला पंजवां एथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद मैंने अवरना कोई करते मैं तारे वोट तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जूऐ हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट धार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेण होर दूजा नाई बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवां मन तन रत्ता राम प्यारी सरबस दीजै अपना वारी आठ पहर गोविंद गुण गाई है

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते ना

निर्मल जिन देखे सब उतर कलमल नानक नाम त्याय त्याय जीवै बिनसिया भ्रम भव तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे तिस को मर के कड़ी ना लागे पा

आनदेन नित जागी, बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसकै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांच है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वार निह चल पाइए, नानक कहो प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां।

पाया माया मोह चकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमति परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै खाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

तह नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया, एक रंग राते जो तुद आप लिवलाई, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम त्यावणिया, अण दिन राते जो हर पाई, मेरे प्रभ मेले मेल मलाई, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझा बनिया, जिन सच जाता से सच समाणी, हर गुण गावे सच बखाणी, नानक नाम रते बैरागी,

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

कह आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेव है सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवे सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरन तुम्हारी आपे धर देख कच्ची।

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किन चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे।

तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

मन वसाई आंदिन सदा रहे भय अंदर भय मार भरम चकावणिया भरम चकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

सावणिया गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाई ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किछु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईए मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती

अंदर पीजे, बैस सुथान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनो नदर करे सो पाई, गुर प्रसादी हो मैं जाई, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सो बा पावणिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवै वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जीओ सफलो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सच संगत मेल मनावणिया, हर सत संगत आपे मेलै, गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गुआई, दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलानी।

रे विद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओ पत होए। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

पावणिया। किस बाजो हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर परसादी पाई। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किस करै जो चित ना होई, तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, एहो मन भूला जांदा फेरे। अमृत बाणी स्यों चित लाई, अमृत शब्द वजावणिया। खोटे खरे तुद आपे उपाई, तुद आपे परखे लोक सबाई। खरे परख खजाने पाए, खोटे भरम भलावणिया।

लाए। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझ ते बाहर किश ना होवे, गुरमुख सो जी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया इसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर

निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया, रहाउ निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै सोभा पावणिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया, सो निर्मल।

मैला खाई फिर मैल वधाई, मनमुख मैल दुख पावणिया। मैली निर्मल सब हुक्म सबाई, सी निर्मल जो हर साची पाई। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा। मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोह। हत उजल नाम त्यावणिया, हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया। गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। रहाउ गोविंद गावह सहज सुपहाई, गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई। सदा आनंद रह भगत करह दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई वाणी वज्जे शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई।

सह मलाई, गुर शब्द मिलह से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखह जानह सोई।

दुखे दुख विहामणिया लिखदियां लिखदियां कागद मस खोई दूजे पाए सुख पाए ना कोई कूड़ लिख है तै कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चित लावणिया गुरमुख सचो सच लिख है विचार।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। किन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै।

दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हों मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचै

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

कि नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द

पाड़ बोझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सच है सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहया समाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख महराता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंदे से।

कै शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावह दूजै पाए महा दुख पावह बिख्या माते

गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवणिया रहाउ। वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथियै शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो पावै, सच्चो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रत्ते तिन सच्चो भावै, आपे दे ना पछो तावै, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावणिया। कूड़क सत तिन्ना मैल ना लागै, गुर प्रसादी अन दिन जागै, निर्मल नाम वसै कट भीतर, ज्योति ज्योत मलावणिया। त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जाणै, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापी किस सूझै नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पकारै त्रिविध माया,

हर सर सागर निर्मल सूई, संत चुगह नित गुरमुख होई, इशनान करह सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुकावणिया, निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै हौ मैं मार, एहन सप्रीतो शब्द साचै, हर सर वासा पावणिया, मन मुख सदा बग मैला, हौ मैं मल लाई, इशनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द बीचारै, हौ मैं मैल चुकावणिया, रतन पदार्थ करते पाया, पूरै सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानण आप पछानणिया, आप अपाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै, नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया, माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, त्रै गुण दिसह मोहे माया।

प्रीतम मेरे तुद बिन अवरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करह तू लह मलाई पूरे गुर कै शब्द ते आई है शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंते गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर फिर आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आ

लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए लियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखा।

कर कृपा दास नदर निहाली, गुण गावह पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया, एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला, माया अग्न ना पोहै तिनको, रंग रते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जाननिया, जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगै काई, तू साहेब सरन सुखदाता।

सब सवार लह नित पूजो हो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना किनह गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिस द भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगन पात शाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया जन्म का फल पाया मन पावन दा कंत हर तेरा तिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया

ले चल ताम, चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना, संत जना मिल पाईय रसना नाम पणा, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा, एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, जल तल मैयल पूरिया रव्या विच वणा, सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा, जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना, चेत मलाई सो प्रभु तिसके पाए लगा, वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशो, हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो, पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मो, इक सहार के नाम बिन अगे लई है खोहे, दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई, प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिल हो परापत होए, वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन, हर सज्जन दावन।

ज्ञान पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से कही है धन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये पाए वगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटी है सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही चेत जित दिन देहे बिनससी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड खड़ोते खिने माही जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाई आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए प्रभ विण दूजा को

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां इनकी शोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिड़िया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

बार ब्रह्म बहुड़ ना बिछड़िया बार जाऊं लख बेरियां हर सज्जन अगम अगा शर्म पई नारायण नानक दर पैया पूख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा।

सात इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाई गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाई मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाय नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाई पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझ विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावे होए मुस्लिम दीन महाने मरण जीवन का भरम चुकावे रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे महला चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सुम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे दे है दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

आओ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपी है बिन नावे वेकार परमे पची है राह दोवे एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया

आस पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पर यह सिमरत पाठ, अंधा चानन रखी है दीवे बल है पचास, चौने सोयना पाई है चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाई है टह ना हुए कपास।

गुरमुख जानिया, गुरमती आप दुआए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विष्ठा अंदर वास साधना जानिया, बिन नावे दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा।

देख कहावह, जां तुद भावै ता होवह राजे, रस कस बहुत कमावह, जां तुद भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह, जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह, जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह, नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईयां, चंगा चंगा होई, जां तू सच्चा तां सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है, सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे कासाई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया, करता आप अपुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया, भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कमाया, संसारी आप खुआयन, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया, चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया, दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया। श्लोक महला पहला, सबाही सलाह, जिन्नी त्याया इक मन, से पूरे साह, वखतै उपर लड़ मोए, दूजै बहुते राह, मन कियां मती खिंदियां, बहुत पए असगाह, गोते खाहे ना निकलै, तीजै मुही ग्राह, भुख तिखा दोए पौंकियां, खादा हुए स्वाह, पी खाने स्यों दोस्ती।

गुण गाहक एक वन भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रज्जै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के

पावना, खट दर्शन कै भीख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ताडी जावना, नानक

आपण है देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अति हूं टका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक परखे।

मूल जान गल्लां करे हाण लाए हाण लब ना चली सच रहै सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगे ओह अगम है वाहे दर जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया महला मांजनवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से विचारिया सोहन खसम पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की कीती पुछा पुछ महला दूजा निःपलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस

पौड़ी खसमै कै दरबार ढाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास

नानक भैवन जी मरै मुहे कालै उठ जाय पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू झूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जमका डर के हा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पीह मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडां वांगी सिर खुहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गवायन। टब्बर रोवण ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा, मुए कथां पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई। ब्रह्म

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद

चढ़े सुआया नानक मंगे दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आंख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे कह कह कतना

खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

ना डूबै तरै जिन किस किया सो किस करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार।

नानक आखण बिखम बीचार। गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई कर इहो वसेख। कहना है किस कहन न जाए, तौ कुदरत कीमत नहीं पाए। रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए, करनी कामन कर मन लए। साहा संजोग व्याह वियोग, सच संतत कहो नानक जोग। गौड़ी

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तक आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया मह चीत, झूठ बकार जागे हित चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत, तर

हृदय पड़वाऊ, जेवा इंद्री एक सुवाऊ, दिष्ट विकारी नाही पहु पाऊ, आप मारे ता पाए नाऊ, शब्द मरे फिर मरन ना हुए, बिन मुए क्यों पूरा हुए, परपंच व्याप रहया मन दोए।

मन मानै अमृत रस पीजै रहाउ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

उठाऊ। नानक गुरमत सहज समाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम का पौ।

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाऊ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी ऊपर शारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी रहाऊ।

पूजा मेवा मैं सब किस चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीम दवाल उसारी, पास मंदर की तेरी।

भोगत सह का पाना रहाउ साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी जियो पिंड सब रास तिस की मारे आपे जीवाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत किस आगे करी पुकार जना।

सातना अमृत केल करे नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा।

जो राते रंग लाई रे तिनकी पंक होवै जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई।

धन धरनी धरे अनत ना चाहया जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्श

मेरा सहु वसै हौं मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसां शब्द वसै पहु जाए। नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार। तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाऊ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

गहीर गौड़ी ग्वारी महला तीजा सो क्यों विसरह जिसके जी पराना सो क्यों विसरह सब माहि समाना जित सेवे दरगाह पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसरह तब ही मर जाऊं रहाऊ तिन तू विसरह जे तुदे आप पुलाओ।

गुरमुख अंतर हर नाम वसाई, गुरमुख भगत हर नाम समाई। आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन को जयकार। गौड़ी गवारी महला तीजा, एक सते सब रूप है रंगा। पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा, पिन पिन वेख हर प्रभ रंगा। एक अचरज एको है सोई, गुरमुख विचारे बिरला कोई। रहाउ सहज पवै प्रभ सब नी थाई, कहां गुप्त प्रगट।

सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेख शब्द मलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी गुवारी महला तीजा मनमुख सूता माया मोहे प्यार गुरमुख जागे।

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

राम जपो हो पवजन उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मन मुख ना चेतै आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

जाई। हर हर नाम देवै जन सोई, आन दिन भगत गुर शब्दी होई। गुरमत विरला बूझै कोई, नानक नाम समावै सोई। गौड़ी ग्वार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई। पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई। ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे। आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे। नाम रते पौजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा। हौं मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजै निज करवासा। नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है तिनकी सच्ची बाणी। जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी। नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी। गौड़ी ग्वार री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग। हिरदै नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा। गुर कृपा ते किनै विरलै चख दीठा, कर्म कांड बहु करह आचार। बिन नामै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास। जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही। जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा वरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे। तैसे जाहे समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कह क्या ओए कर्म कमाही। नाना रूप सदा है तेरे, तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

निर्मला हम अवगणयारी हर शरणागत राख लेहु मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी।

कथा, निर्गुण कथा कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोविंद सत संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाई, रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहु हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना सिउ प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ए हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा।

पणंजह रंग सिउ जे आप दयाल हुए देह हम बण जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाउ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

महला चौथा ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खात दे कर भोग बलासा त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जां हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआर भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छडाए मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम गुर सत गुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ लै तुरे सौदागरी सौदागर धावे धन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो

हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपने, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

धार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुँह लै बोल है गुण बिहून

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाउ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधर हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिय हर कृपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे इनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरे जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कानी जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो कितै हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाव मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवै निज कर वसीऐ गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीऐ मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसीऐ हर हर आप दया कर देवै ताय अमृत हर रस चखीऐ मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे ते साकत नर जम कुटिऐ।

निरंजन नरहर जित सेवय लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी।

अन दिन अन दया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़े हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सत गुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आग है आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियारै दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आग्या सीस ना बेचिया वे आवह जाहे अपागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत।

गुर कै बचन हर पाया रहाऊ, मेरा हियरै प्रीत राम राय की। गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड, सब सतगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया।

अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीउ मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीउ हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीउ हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीउ हर आप उपाए हर आपे वेखे हर आपे कारै लाया जीउ एक खावह बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीउ एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक न भिख मगाया जीउ सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीउ गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम पर गासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटण्यो हो सद वारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुरु।

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाएदा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है ना।

हर कथा मंगह हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजै जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजै जियो, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो। मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जियो। वड भागी जप नाओ जियो, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

ला पंजवा राग गौड़ी गुआर री चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटे जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड़ ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

मूर्ख काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे जे धंधे में

रूपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसै दुख दर्द ते नानक नसै।